0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 31,773,000 कोटिरूप्यकाणां राष्ट्रिय परिपत्र जैवोर्जा योजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। आर्थिक विषयक मन्त्रिमण्डल समित्या गुवाहाटी नगरस्य बेहाराचर्यालीतः तेजपुरं यावत् चतुष्पथीय मार्ग निर्माणाय प्रख्यापितम् अनुमोदनम्। संसदा 2023 वित्तीय वर्षयोः अतिरिक्त व्ययार्थं 54,000 कोटिरूप्यकाणां विनियोग विधेयकं पारितम्। मुंबई उच्च न्यायालयेन यौनोत्पीडन प्रकरणे तहलका संस्थायाः पूर्व संपादकाय तरुण तेजपालाय 10 वर्षात्मकः कठोर कारावास दण्डः श्रावितः। अपि च कुंतक क्षेपकौ आशीष यादवः टी धरणीधरणः अपि च चक्रक्षेपक क्रीडिका अमानत कम्बोजः विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य गोबरधन जैवोर्जा योजना 31,773,000 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन पारिता, येन 1,500,000 नववृत्त्यवसराः भविष्यन्ति। सहैव कृषि गोमयादि अपशिष्टेभ्यः स्वच्छेन्धनं निर्मास्यते। एषा योजना अग्रिमं 10 वर्षं यावत् सेत्स्यति। अनेन सहैव असमे प्रायः 8,000 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन 35,100 किलोमीटर दीर्घस्य चतुष्पथ राजमार्गस्य निर्माणाय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदा अद्य 26,000,000,000 विनियोग विधेयकं पारितम्। राज्यसभया विचारणानन्तरम् एतत् विधेयकं लोकसभायै प्रत्यर्पितम्। लोकसभया एतत् पूर्वमेव पारितम् आसीत्। अस्मिन् विधेयके 2023 वित्तीयवर्षे भारतस्य सञ्चितनिधेः स्वीकृतराशिभ्यः अतिरिक्तानां व्ययानाम् अधिकृतस्वीकृतेः प्रावधानमस्ति। जम्मू कश्मीर विषये सदने आशंकाः शमयन्ती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन अवदत् यत् 70+300 अनुच्छेदस्य विलोपनात् परं केन्द्र सर्वकारेण जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशाय महती वित्तीय प्रशासकीय सहायता प्रदत्ता। सा न्यवेदयत् यत् जम्मू कश्मीर आरक्षक बलस्य वेतनानां निवृत्ति वेतनानां च सम्पूर्णः भारः केन्द्र सर्वकारेण उह्यते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अनुच्छेदस्यास्य निरसनेन पुनरेकवारं सिद्धम् अभवत् यत् पाकाकृत भूभागेन सह समग्रः जम्मू कश्मीर प्रदेशः भारतस्य अभिन्नः अङ्गः अस्ति। विधेयक पारणानन्तरं सभापति पीठे उपविष्टः घनश्याम तिवारी सदनस्य कार्याचरणम् आदिनाय अस्थगयत्। श्वः प्रातः 11 वादने सदनस्य उपवेशनं पुनः सेध्यति। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य तहलका पत्रिकायाः भूतपूर्वः सम्पादकः तरुण तेजपालः यौनोत्पीडन प्रकरणे दोषी घोषितः। तस्मै च 10 वर्षाणां कठोर कारावासस्य दण्डः श्रावितः। अनेन सहैव न्यायालयेन तेजपालाय 21,000,000 रूप्यकाणां आर्थिक दण्डः अपि प्रयुक्तः। स च राशिः पीडितायै प्रदास्यते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नीट प्रकरणे आरक्षकाणां कार्याचरणातिक्रममादाय विपक्षिणाम् अनवरत कोलाहलेन लोकसभा अद्य आदिनाय स्थगिता। प्रथमस्थगनात् परं यदा अपराह्ने द्विवादने कार्याचरणं पुनरारब्धम् तदा लोकसभया संयुक्त समित्याः 25-2000 विकसित भारत शिक्षाधिष्ठान विधेयकस्य उपस्थापन समयः 26-2000 शीतकालीन सत्रस्य अन्तिम सप्ताहं यावत् वर्धयितुम् अनुमतिः प्रदत्ता। विपक्षस्य तीव्र कोलाहले एव वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इत्येषा अनुमोदनार्थं कर संबंधी अन्य विधि विधेयकं 26-2000 प्रस्तुतवती। विधेयकस्य अनुमोदनानन्तरं पीठासीनाधिकारी संध्या राय इत्येषा श्वः प्रातः 11 यावत् सभां स्थगितवती। इतः पूर्वं यदा प्रातः 11 सदनस्य कार्याचरणं प्रारब्धं तदा लोकसभया हिरोशिमा नागासाकी नगरयोः परमाणु विस्फोटेन मृतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। ततः परं अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ प्रश्नकालस्य संचालनाय प्रयासम् अकरोत् किन्तु विपक्षस्य सदस्याः छात्रप्रदर्शनेषु आरक्षकाणां कथितातिक्रमविषये गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य वक्तव्यम् अयाचन्। अस्मिन् क्षोभाकुले वातावरणे लोकसभा अपराह्ने द्विवादनं यावत् स्थगिता। सर्वोच्च न्यायालयस्य पीठेन नीट यूजी परीक्षायाः संगणकीकरण प्रसंगे केन्द्रस्य शपथपत्रे याचिकाकर्तृणाम् अभिमतं समाहूतम्। केन्द्रेण अत्राभिहितं यत् पारंपरिक लेखनी पत्र प्रणाल्याः स्थाने संगणक माध्यमेन परीक्षा आयोजनाय विचारः क्रियते। अस्य वादस्य अग्रिमा विचारणा अगस्त मासस्य 19 तिथौ भविष्यति। केन्द्र सर्वकारेण न्यायालये निवेदितं यत् संयुक्त प्रवेश परीक्षा इव नीट परीक्षामपि एकस्तरीय द्विस्तरीय वा संगणक प्रणाल्या आयोजयितुं विचार्यते। सर्वकारेण इतोपि प्रोक्तं यत् प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं व्यवस्थागत विफलताश्च समूलं उन्मूलयितुं नीट परीक्षा प्रक्रियायाः व्यापको परिष्कारः आरब्धः अस्ति। उच्चसदनस्य सदस्यः नीरज डांगी संसदीय कांग्रेस दलस्य मुख्य संघटक पदे मनोनीतः। कांग्रेस संसदीय अध्यक्षया सोनिया गांधी इत्यनया अस्य प्रख्यापनं कृतम्। जम्मू कश्मीर राज्ये सुरक्षा कारणात् एकदिवसं यावत् स्थगिता वार्षिकी श्री अमरनाथ यात्रा अद्य पुनः प्रारब्धा। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकात् आरब्धायाम् अस्यां पवित्र यात्रायां प्रतिदिनं सहस्रशः भक्ताः बहुस्तरीय सुरक्षाव्यूहे अमरनाथ गुहां प्रति गच्छन्ति। अस्याः यात्रायाः प्रारम्भात् अद्यावधि 70,000+ श्रद्धालुभिः पवित्र गुहाधाम निदर्शनं विहितम्। सर्वकारेण तीर्थयात्रिणां सौविध्याय सुरक्षायै च उत्तमाः प्रबन्धाः विहिताः। संचार सूचना प्रौद्योगिकी विषयक संसदीय स्थायी समित्याः अध्यक्षः भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे इत्यसौ मेटा संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः मार्क जुकरबर्ग इत्यस्य क्षमा याचना भारतस्य संविधानस्य संसदः च महत्तरः विजयः इत्यभिहितवान्। संसद परिसरे वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः सः अब्रवीत् यत् एतेन स्पष्टीभवति यत् यः कोऽपि भारते व्यापारं कर्तुमिच्छति तेन भारतस्य नियमानां पूर्णतया पालनं करणीयमेव। केरलराज्ये अद्य अतिवृष्टेः सम्भावनामवलोक्य त्रिषु जनपदेषु रक्तसञ्चेतना घोषिता। राज्यस्य इडुक्की कोट्टायम तथा पथनमथिता इति त्रिषु जनपदेषु अतिवृष्टेः सम्भावना वर्तते। पूर्वमेतेषु जनपदेषु नारंगवर्णीया संचेतना आसीत् या अद्य परिवर्तिता। अनेन सहैव अन्येषु 5 जनपदेषु अतीववृष्टेः पूर्वाकलनम् अनुसृत्य नारंगसंकेतः यथावत् प्रवर्तते। अवशिष्टेषु 6 जनपदेषु च अतिवृष्टेः आशंकामधिकृत्य पीतसंकेतः परिवर्तितः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य उत्तराखण्ड झारखण्ड पश्चिम बंगाल ओडिशा मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा प्रदेशेषु अतिवृष्टिमुद्दिश्य पीतवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अमेरिका देशस्य यूजीन नगरे प्रवृत्तायां विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 प्रतियोगितायां भारतस्य कुंतक क्षेपकौ आशीष यादव टी धरणीधरनः तथा चक्रक्षेपिका अमानत कम्बोज च स्वप्रति स्पर्धानाम् अन्तिमचक्रं प्रविष्टवन्तः इति वार्ताः।
1: ആകാശവാണി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ.
2: എനിക്കൊരു പിടിവാശിക്കാരനായ അയൽക്കാരനുണ്ട്. കോളനിയിലെ എല്ലാവരും സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വൈദ്യുതി ബിൽ പൂജ്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അയാൾ മാത്രം തയ്യാറായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ PM സൂര്യാഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന എന്നാണെന്ന്. പിന്നീട് ഓരോരുത്തർക്കും വൈദ്യുതി ബിൽ പൂജ്യം വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇത് ഞാനും സ്ഥാപിക്കാമെന്ന്. PM സൂര്യാഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന ചേരുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ PM സൂര്യാഘർ .gov.in.

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।